आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: क्यों लाया बला को यहाँ?
1: छोड़ा था सड़क पे मरने के लिए।
0: हाँ, दूर का तो दिल दरिया है और पिछवाड़ा समुंदर, तेरे बस का नहीं है ये प्यार श्यार, समझा ना?

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

सदाबहार संगीत कालजयी नेपाली सुगम गीत संगीत को प्रस्तुति सदाबहार संगीत।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत

जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

0: क्या मैं उसी इंस्पेक्टर को देख रहा हूँ जो कल तक हमारी फोर्स का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था?
1: हाँ सर, सही कहते हैं। जो कल तक युद्ध जीतने का दावा करता था, वो आज जिंदगी के युद्ध में हार गया है सर,
2: हार गया है।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।